0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

0: Like our radio. Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर 20 kg still 10.99.
1: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: जो कर्ण जन्म हुआ था वह बिग बॉस में दोबारा होगा तथा
3: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जन मीडिया 826 EE396
7: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: ये है लाइका गोल्ड

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: लाइका रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे। बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स।
2: हैव यू नोटिस द वे फैंस शाउट एट फुटबॉल मैचेस?
3: ओह, वेक अप!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising.

0: चीज। आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: इट्स समर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: ये है लाइका रेडियो, वन परफॉर्मर।
2: टीवी के सामने तो प्रोसन से कहना, क्या पहन रही है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ी हो खिलाड़ी।
3: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
4: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
5: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट,
6: नंदा फंक्शन रखा हुआ है।
3: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
5: 29th October, ओवर अरेना वेम्बली लंदन, 31st October, मैटियोली अरेना लेस्टर।
3: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस, एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके।
5: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिन एक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस,
3: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अवेयरनेस। Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

0: now top loss, up here stop loss.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
2: भाई बहनों का प्यार, खुशियाँ बेशुमार। लाइका रेडियो की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: குட் மார்னிங். स्वागत है खुशामदीद जी आया नू संगीत के संसार में। आइए मिलकर चले, तीन घंटे का सुहाना सफर बनाएं। वीकेंड सामने है भाई, वीकेंड की शुरुआत ऐसी हो कि पूरे वीकेंड पर संगीत का नशा सवार रहे। माय नेम इज रवि शर्मा, आई वांट टू से थैंक्स टू काजल एंड नाउ स्टार्टिंग विद द शायरी ओपनिंग माय डायरी। दोपहर बाद एक बजे तक हम और आप साथ साथ इस सुहाने सफर पर रवाना चलेंगे, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। आपको जुड़ना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। मनोरंजन है कार्यक्रम का नाम और बहनों भाइयों रवि शर्मा है मेरा नाम। जो दूर से भी नजर यार हम करते हैं, हजार मर्तबा ये जान निसार हम करते हैं। तेरे ख्याल से बातें हजार हम करते हैं, गमे फिराक को यूं खुशगवार हम करते हैं। वो बार बार सजा जुर्म शौक पर देते हैं, मगर कसूर वही बार बार हम करते हैं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. We're celebrating Raksha Bandhan on Leica.
0: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई, मैं जिस मंदिरों से, पंडितों से, विद्वानों से और यहाँ पर जो लोग सेलिब्रेट करते हैं संस्थान, उनसे संपर्क करके हमने तो कल मना लिया, लेकिन आज भी मना रहे हैं। भारत में आज ही है, बता दूं आपको, तिथियों का जो गिनने का कैलेंडर का जो भाई तरीका है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो रक्षाबंधन कल था यूरोप में और इंग्लैंड में, लेकिन भारत में आज है। तो यहाँ आज वो आज वाला कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, तो भाई जो मना रहे हैं बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। गीत लगाएंगे हम, राखी के गीत भी लगाएंगे, लेकिन पहले ये जो शायरी पढ़ दी हमने, इससे कौन से गीत को जोड़े साहब। जो दूर से भी नजर यार हम करते, हजार मर्तबा ये जान इसार हम करते, तेरे ख्याल से बातें हजार हम करते, गमे फिराक को यूं खुशगवार हम करते। वो बार बार सजा जुर्म शौक पर देते, मगर कसूर वही बार बार हम करते। पर किसके लिए करते, क्यों करते, कोई मिला ऐसा

0: मनोरंजन कार्यक्रम की शुरुआत हमने अभिमान फिल्म के गीत से की, जिसे गा रहे थे किशोर कुमार, मीत ना मिला रे मन का। और अभी अभी जो गीत पूरा हुआ है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म हमारा खानदान। आवाज पहचान ली होगी आपने, मोहम्मद अजीज की आवाज थी। और बहनों भाइयों, इस तरह से बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम प्रवेश करते हैं मनोरंजन प्रोग्राम के उस मोड़ की तरफ जाते हैं, जहां पर हम बताते हैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पाउंड का रेट, SBI UK।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज भाई कहते हैं कि अगर आप पैसे भारत भिजवाना चाहते हैं, रेट अब भी अच्छा चल रहा है। यस, वो दे रहे हैं आज एक पाउंड के बदले 129.25 रुपीस, 129 रुपए और 25 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज लाइका रेडियो।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: One performer.
3: टीवी के सामने प्रोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गया।
1: A whole universe of entertainment.
6: चैनल में फंक्शन रखा हुआ है।
4: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October OVO Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.10 से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी जी सिर्फ 10.99।
8: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
15: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
16: T's and C's apply.
17: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
18: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
5: लाइक आवर रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे. बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स.
19: New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
5: तड़पता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें सुन रहे थे आप, और ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे कौन भला।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Win with Jamin Foods.
0: और भाई भाइयों तैयार हैं आप कुछ जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए? भाई रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारे पास आपको देने के लिए कई उपहार हैं। जुड़े रहिएगा दिन भर लाइक रेडियो नेटवर्क के हर स्टेशन के साथ, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स और ये इनाम जो हैं सभी कार्यक्रमों में दिए जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, लाइक रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन टुडे बाय गिविंग अवे अ बॉक्स ऑफ ट्रीट्स बाय जेमिन फूड्स। जेमिन is renowned for mouth-watering range of namkeen, he's got pickles, mukwas and papad, plus exciting ready meals like khichdi, poha, shira, pav bhaji and veg biryani. Ready to just 5 minutes by ready in 5 minutes by adding the hot water. तो भाई jamsnacks.com पर इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन हम जो कंपटीशन के माध्यम से उपहार देना चाहते हैं उसमें आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए। सिंपली सेंड द वर्ड जेमिन फॉर योर चांस टू विन, फॉर योर चांस टू यू नो एंटर इन द कंपटीशन। भाई सिंपली सेंड द वर्ड जेमिन, JAIMIN। लेकिन उसके साथ क्या लिख के भेजना आपने, ये जेमिन तो भाई आप कैपिटल अक्षर में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि वो जो भाई हम अगर पार्सल के रूप में भेजेंगे आपको तो सही जगह पर पहुंचे। तो नोट कीजिए, जेमिन लिखना है, JAIMIN, उसके साथ आपका एड्रेस यानी पोस्टल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस भी चाहिए और भाई दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्सल ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो तो कॉम्पिटिशन के साथ होती हैं। तो भाई जैमिन का ये उपहार पार्सल हासिल करने के लिए आप शुरू हो जाइए। नंबर आप जानते हैं हमारा, 07424232323 हो गया याद, 07424232323 तीन बार। तो भाई ऑल द बेस्ट, दिन भर ये सिलसिला चलेगा, मेरे कार्यक्रम में लाइन खुली है और कॉम्पिटिशन्स के लिए आपकी एंट्रीज आर इनवाइट।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। नेपाल में लापता विदेशी नागरिकों की लिस्ट जारी, इनमें 178 यानी 178 हिंदुस्तानी भी शामिल। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 489 हो गई है। श्रीलंकाई क्रिकेटर सोनल दिनुषा, जिनकी भारत में भी तारीफ हो रही है, भाई बहुत बढ़िया खेले हैं, मैच ड्रॉ हो गया है लेकिन सीरीज भारत के पक्ष में गई है। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में डेड बॉडीज मिली है। लेकिन शुरुआत इस खबर से, चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि तिब्बत में 558 लोग लापता हैं, झील के टूटने का हाई रिस्क सामने है। बुधवार को आई बाढ़ के कारण तिब्बत में 5 लोगों की मौत हो गई है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 558 लोग अभी भी लापता हैं। उधर चीन ने वार्निंग दी है कि हाल में हुए भूस्खलन के बाद यानी जमीन की खिसकने के बाद बनी एक झील के टूटने का जोखिम बहुत ज्यादा है, इससे नीचे की ओर एक और बाढ़ आ सकती है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के मुताबिक आज शुक्रवार तक नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी इस बैरियर झील में अप्रोक्सीमेटली अनुमानित 25 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है। ये अगर झील का किनारे टूटते हैं और पानी तूफान बनकर के निकलता है तो बहुत विनाश होने की आशंका है। आपको बता दें कि बैरियर झील उस जलाशय को, उस पानी के ठहराव को कहा जाता है जो मलबे के कारण नदी का रास्ता रुकने से बनता है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से 489 लोगों की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, अभी ये नई खबर आ रही है कि रासुआ और नुआकोट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक बुधवार को आई इस भीषण बाढ़ में अब तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है उसी इलाके में। नेपाल में लापता विदेशी नागरिकों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 178 हिंदुस्तानी शामिल हैं। विदेशी नागरिकों की सूची में इस आपदा में 537 विदेशी नागरिकों के नाम भी हैं जो या तो लापता हैं या जिनके मरने की पुष्टि हो चुकी है। जन्म तिथि और उनकी राष्ट्रीयता दी गई है। ये सभी लोग बाढ़ के आने के बाद से संपर्क में नहीं है। लापता लोगों में सबसे ज्यादा 178 इंडियन सिटीजन शामिल हैं। इसके अलावा 65 अमेरिकी, 53 यूक्रेनी, 51 मलेशियाई, 33 ऑस्ट्रेलियन और 33 ब्रिटिश सिटीजन भी लिस्ट में शामिल हैं। अधिकारियों की ओर से लापता लोगों की तलाश जारी है और मुतासिर इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना यानी फौज और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। नेपाल में बाढ़ के बाद बने गंभीर हालात के बीच प्रतिनिधि सभा और विपक्ष के नेता भीष्मराज अंगदेम्बी ने कहा है कि इलाके की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम राहत और बचाव अभियान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि इन चुनौतियों के बावजूद फौज और सभी हेलीकॉप्टर टीमें पूरी तरह अभियान में जुटी हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है, साथ ही मुतासिर इलाकों में रास्ते से मलबा हटाने की भी कोशिशें चल रही हैं। तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान फिलहाल रोक दिया है। अधिकारियों को डर है कि भूमि खिसकने के बाद, भूस्खलन के बाद मलबे के बीच बनी झील के पानी का स्तर बढ़ने से आने वाले दिनों में फिर से बाढ़ आ सकती है। कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद मलबे के बीच बनी झील का पानी लगातार बढ़ रहा है। बात क्रिकेट की करें तो भाई श्रीलंकाई क्रिकेटर सोनल दिनुषा छा गए। भारत में जमकर तारीफ हो रही है उनकी। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच एक रोमांचक मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुषा की शानदार बैटिंग के बाद भारत में उनके प्रशंसकों में जो है बहुत उत्साह है। दूसरे मैच में इस बल्लेबाज ने दोनों पारियों में कुल 236 रन बनाए, वहीं उन्होंने 426 गेंदें खेलकर मैच को बचा लिया, वरना यह मैच भारत के पक्ष में जा रहा था क्योंकि श्रीलंका को फॉलो ऑन करना पड़ा था भारत के बड़े स्कोर के सामने। 26 साल के दिनुषा ने श्रीलंका के लिए 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और उन्हें श्रीलंका के उभरते हुए टैलेंटेड ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। एक और मैच चल रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच और भाई उसकी स्थिति हम आपको आगे चल करके बताएंगे या फिलहाल बता देते हैं, इंग्लैंड ने 248 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही मैच आज शुरू होगा, ये पहले दिन के मैच की समाप्ति का स्कोर है, आज आगे मैच चलेगा तो फिर स्कोर से, ताजा स्कोर से हम आपको अवगत कराएंगे। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: our sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ होल ट्रेवल याद दिला रहे हैं कि भाई वी आर नोन फॉर कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. साउथ होल ट्रेवल का फोन नंबर है 02085748410. साउथ होल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड. तो भाई दुबई की यात्रा अगर कंफर्टेबली और भाई रीजनेबल उसमें करना चाहते हैं तो साउथ होल ट्रेवल से संपर्क कीजिएगा.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: और अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर भाई आपकी एंट्रीज हो रही हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट टू पुट ऑल दीज फोर थिंग्स. जैमिन लिखने के बाद JAIMIN ये लिखने के बाद आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना पोस्टल एड्रेस और अपना ईमेल एड्रेस, ये चार जानकारियां अपने बारे में जरूर दीजिएगा. यू विल बी एंटर्ड इनटू द पार्टी कॉम्पिटिशन और नतीजा जो है प्रोग्राम की खत्म होने से पहले हम अनाउंस करेंगे यहीं रेडियो से. तो जुड़े रहिएगा अपने लाइका गोल्ड रेडियो के साथ.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
10: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 7 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
11: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
12: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Leicester na लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट £5 टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजेस 07957477330 मस्ती म्यूजिक एंड ए फुल ऑन गरबा फन रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
4: बंद कर रेडियो
5: नहीं करू की तूने
4: अरे कौचु बंद कर मैं टीवी जोऊ छे
5: तुम्हारे जे जोऊ है ते जुओ समझा ने जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू नहीं करू नहीं करू
4: एटले
5: शू वार छोड़ीस घर छोड़ीस पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू ना एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू
6: द वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर

0: चाटा लगा भाई, बहुत जोर से लगा। ऐसे काम क्यों करते हैं चाटा। लता जी की आवाज में ये गीत सुनवाने के बाद एक बार फिर से आपको करेंसी रेट्स बताते हैं लैम्फाई के द्वारा। इस बार
1: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Very good morning. Let me tell you how much they are giving for £1 in currencies. ये भाई LemFi के रेट्स हैं। भारतीय मुद्रा में for £1 they are giving 129.59 rupees. पाकिस्तानी 376.99, श्रीलंकन 445.5, बांग्लादेशी टके 167.27 and अफगानी 89.55.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LAIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LAIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 109.02 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
5: Back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Center.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: In 4 days, Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

स्वागत है कार्यक्रम मनोरंजन के दूसरे भाग में। और इस भाग में हम आपको चिंतन सुनाते हैं। 11:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में, एंड दिस इज द टाइम फॉर चिंतन। आज की चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं ईलिंग से सपना पंकज शर्मा का भेजा आलेख। कहती है, रक्षाबंधन का त्योहार भारत में मना रहे हैं, यहां भी मना रहे हैं बहुत से लोग आज। मैं दिल से दुआएं देती हूं कि भाई बहनों का प्रेम अटूट रहे और ये पावन रिश्ता कायम रहे, राखी के धागों की मजबूती बरकरार रहे। कितना अच्छा लगता है जब भाई राखी बंधवाने खुद आते हैं या बहनें उनके घर जाकर के राखी बांधती हैं। भाई कितना भी दूर क्यों ना हो, दिल के बहुत करीब होता है आज के दिन, दूर जाकर भी याद करते हैं। लब पे उनके बयान होते हैं, शान होती है इनसे मायके की, भाई बहनों का मान होते हैं। अब देखिए साहब, सपना कहती है कि ये रक्षाबंधन का जो धागा है ना, ये सिर्फ भाई बहन के बीच ही संबंध मजबूत नहीं करता है। रक्षाबंधन, रक्षा सबको चाहिए। बहनें भाई से रक्षा का वचन लेती हैं, लेकिन भाई की रक्षा के लिए वचन देती भी हैं, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में। वो अपने मायके की, अपने भाइयों की और भाई के बच्चों की, परिवार की कामना करती हैं। बताती है कि एक बार हमने देखा कि रक्षाबंधन जो श्रावणी का त्योहार कहलाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा होती है, इसमें जिनके भाई नहीं होते हैं या जिनकी भाई बहने और परिवार वाले लोग होते हैं, वो ब्राह्मणों से भी राखी बंधवाते हैं। समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, मर्यादा की सिक्योरिटी के लिए ये भी एक वचन लेना होता है। बहुत सारे लोग ब्राह्मणों से राखी बंधवाते हैं कि आप हमारी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। और इतना ही नहीं, जब कोई सैनिक भारत में युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाता है तो उनकी बहनें उन्हें तिलक लगा करके, राखी बांध करके विदा करती हैं, जाओ ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। यहां पर पत्नी भी तिलक लगाकर पति को विदाई देती है जब कोई सैनिक युद्ध के लिए बॉर्डर पर लड़ने जाता है। कहती है, यहां लंदन की एक घटना है। दारा सिंह के भाई रंधावा एक विदेशी पहलवान के मुकाबले अखाड़े में उतरने लगे थे, फ्री स्टाइल कुश्ती, और उसमें बड़े रिस्क होते हैं। पहले से साइन करवा लिए जाते हैं कि आपको कोई गंभीर चोट आ जाए तो खेल के आयोजक इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ढोल बजाते हुए दारा सिंह जी ने भी स्टेडियम में प्रवेश किया। भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा थी, लेकिन उसके तुरंत बाद रंधावा ने दारा सिंह जी से, भाई से आशीर्वाद लिया। वो तैयार थे लेकिन सबकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। तभी देखा मंदिर के एक पंडित जी भारतीय वेशभूषा में रिंग के नजदीक पहुंचे और उन्होंने रंधावा को ये राखी का धागा बांधा। अनाउंस करके सबको बताया गया कि अक्सर भारतीय पहलवान ये आशीर्वाद, ये प्रसाद और ये रक्षा का कवच लेकर के मैदान में उतरते हैं और उन्हें विजय प्राप्त होती है। पंडित जी ने रंधावा के हाथों पर वो कलावा बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महावर तीन त्वाम प्रतिभग्नामी रक्षे माचर। चिंतन, चिंतन। ये आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करे, ये दुआएं, शुभकामनाएं, ये प्रार्थनाएं हैं इस धागे में गुथी हुई। तो बहनों भाइयों, सिर्फ बहने ही नहीं, इस धागे को गुरु जी, आचार्य जी, ब्राह्मण और कोई भी परिवार का बड़ा आदमी बांध करके आशीर्वाद देता है, तुम्हारी रक्षा हो। तुम हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जा रहे हो, हम तुम्हारी रक्षा के लिए दुआएं करती हैं। बहने भाई के हाथ पर राखी बांध कर तिलक लगाती हैं और युद्ध में जाने के लिए सैनिक तत्पर होते हैं। विश्वास होता उन्हें अब कुछ नहीं बिगड़ेगा,
राखी है ना। बहन को रक्षा का वचन देते हैं, देश को रक्षा का वचन देते हैं, सीमाओं पर डटे होते हैं और बहनें उनके लिए प्रार्थनाएं करती हैं। सबको रक्षाबंधन का त्योहार मुबारक हो, बधाई हो।

0: चिंतन,
1: आज का चिंतन, आज का विचार, राखी का त्योहार और उसके साथ जुड़ी मान्यताएं। अंजलि सिंह कहती है कि हमारे यहाँ तो आज भी पहले आचार्य जी राखी बांधते हैं, फिर बहनें बांधती हैं। राखी के इस धागे में कितना प्यार भरा होता है, आशीर्वाद भरा होता है, दुआएं प्रार्थनाएं शामिल रहती हैं। थैंक यू आज के चिंतन के लिए। आलेख हमें भिजवाया था सपना पंकज शर्मा ने ईलिंग से। सपना बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम सुनती है रेडियो पर, ये जानकर बहुत खुशी हुई। और आप चिंतन तो बड़े चाव से सुनती हैं, आलेख के लिए शुक्रिया। जो गीत हमने आपको सुनाया ये तो भाई राखी के त्योहार की पहचान बन चुका है बरसों से। आई थिंक दैट वाज 1959 व्हेन द फिल्म केम छोटी बहन, और नंदा थी वो छोटी बहन जिन पर ये गीत पिक्चराइज हुआ था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और निभाते हैं। तो बहनों भाइयों, चिंतन को समेटते हुए याद दिला दूं आपको, तीज त्योहारों का जिक्र तो होता ही है, महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रसंग, कुछ प्रेरक जो कहानियां होती हैं वो हम चिंतन में शामिल करते हैं। एक बार फिर से सपना को धन्यवाद दोहराते हुए, राखी की शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। बता दूं हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद चिंतन हम आपको सुनवाते हैं। आज का चिंतन समाप्त होता है।
0: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं कि भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो सही अवसर है क्योंकि रेट अच्छा चल रहा है। टुडेज रेट इज दे आर गिविंग 129.25 रुपीज फॉर वन पाउंड, भारतीय करेंसी में 129.25 रुपए एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Like Our Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel. At all protected.
8: Lister, Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.

लेजेंडरी वॉइस ऑफ कविता कृष्णमूर्ति. इस गीत में आपने सुनी उनकी आवाज. दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म. कौन सी फिल्म है ये? नगीना. That was written on the screen. पर कविता कृष्णमूर्ति जी भाई बड़ी सुरीली आवाज है और इन्हें मंच पर भी हमने सुना है और रेडियो पर सुनवाया भी है.

0: सुरीली गायिका कविता कृष्णमूर्ति और भाई सुब्रमण्यम साहब इनके पति देव वो बड़े जाने माने वायलिनिस्ट हैं, वायलिन बजाते हैं। घर के कोने कोने में संगीत जो है रचा बसा हुआ है।
1: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: कंपटीशन चल रहा है, एंट्री करते रहिए भाई, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना पोस्ट एड्रेस भेजते रहिएगा जेमिन लिख करके। नतीजा अगले घंटे में

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: पॉडकास्ट अपडेट।
3: और हमारा नया एपिसोड भाई पॉडकास्ट में नोट कीजिए, होस्टेड बाय राज बदन एंड खुश, इट इज द दिवाली स्टोरी शोकेस। उपलब्ध है द टीम ऑफ दिस इनक्रेडिबल शो टेक अस बिहाइंड द दिवाली स्टोरी। आप जानते हैं दिवाली रामन चरित मानस या भगवान राम के जीवन का वो समापन चैप्टर है जिसमें राम जो है अयोध्या लौटते हैं। वेल, रामायण स्टिल मैटर्स टुडे। नितिन पालन, फाउंडर ऑफ द सनातन इवेंट्स, शेयर्स व्हाई दे चूज टू प्रेजेंट द शो इन इंग्लिश। भाई उसमें बताया जाएंगे, ये देखिएगा लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन एंड एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
4: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
5: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds, sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams, sirf £1.99 each, ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg, sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 pieces se shuru. और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
8: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.
12: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11,
13: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
15: Danu 11, 11. Danu Properties. 11, 11. लाइक आवर रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे. बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स.
16: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
18: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
19: She's back.
20: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने. इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर.
19: Catch Anisa Nasir as she returns on the Big Show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Laika Gold and Laika Radio, Greater Manchester.
21: Cool music for a super hot summertime on the Laika Radio Network.

0: प्रेम में रोना पड़ता है, आंसू बहाने होते हैं, इंतजार करना होता है, क्योंकि प्रेम प्रेम है वही जो अधूरा रहता है, जो पूरा हो गया वो तो खत्म हो गया। न राधा को शाम मिले न मीरा को शाम मिले, लेकिन उनका प्रेम अखंड है, निरंतर है। भाई जन्माष्टमी का त्योहार याद दिला दूं आपको, एक तो 30 तारीख को साउथ हॉल में श्री राम मंदिर से जो है वो शोभा यात्रा निकलेगी, देखने वाली होती है, भजन कीर्तन गाते हुए लोग साउथ रोड पर नजर आएंगे, किंग स्ट्रीट में नजर आएंगे, राम मंदिर से लेके विश्व हिंदू मंदिर तक सुंदर झांकी। और इसके अलावा भाई 4 सितंबर को है वैसे जन्माष्टमी का त्योहार, मंदिर सजेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, हैरों में दिन में मेला लग रहा है, कुछ बिहारी टेंपल वृंदावन यूके वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हैरों में, तो भाई वहां भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा ये जन्माष्टमी का पर्व। हमने स्टूडियो में इस गीत के माध्यम से अभी मना लिया। जय श्री कृष्णा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. अगर आप LemFi के माध्यम से पैसे भिजवाते हैं तो एक पाउंड के बदले they are giving in Indian currency 129.65 rupees, Pakistani 377.17, Sri Lankan rupee 445.79, Bangladeshi take 167.38, Afghani 89.63 and Kenyan shillings 175.88.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold is trading at the rate of 108.89 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
7: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर, सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट महाराजा टूर्स.co.uk और कॉल 07956154846।
3: Tibon Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
10: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
12: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.

लौट आइए संगीत की ओर और एंजॉय कीजिए लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज। लता जी दुनिया में नहीं है लेकिन स्वर है, क्योंकि स्वर ईश्वर है।

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है लॉर्ड्स के मैदान में, सेकंड टेस्ट है ये। और आपको बता दें कि भाई स्कोर के आंकड़े जो हैं, इस वक्त इंग्लैंड की पूरी टीम 290 रन बनाकर आउट हो गई है।

0: talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: वेल, रक्षाबंधन का गीत सभी बहनों की ओर से सारे भाइयों के नाम सुनवाते हुए हम इस मोड़ पर आ गए हैं। देखते हैं भाई, कुछ चेंज हुई है रेट्स में। SBI UK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK दे रहे हैं 1 pound के बदले 129.25 rupees रेट चल रहा है, 129.25 rupees का, दैट्स मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेज and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है चित्रगुप्त. This is a tribute to the great legendary music director of a film industry, श्री चित्रगुप्त श्रीवास्तव.

0: अमर संगीतकार चित्रगुप्त की रचना सुनी आपने भाई, ऐसे ऐसे कितने ही गीत घड़ गए वो। याद है गीत वो, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और ऐसे ऐसे कई गीत उन्होंने रचे भाई जो हर एक की जुबान पर तो चढ़े, लेकिन पता नहीं अभी उन्हें याद है या नहीं। ये महान संगीतकार चित्रगुप्त की रचनाएं हैं। उनके बेटे आनंद और मिलिंद, ये दोनों भी भाई संगीत के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं, लेकिन इस सप्ताह के कलाकार के रूप में हमने आपको चित्रगुप्त की कुछ रचनाएं सुनवाई, और संडे तक अभी और भी सुनेंगे आप। आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज चित्रगुप्त, और ये थी ओनी की रचना, फिल्म आई थिंक काली टोपी लाल रुमाल समथिंग नाम था फिल्म का, जिसका ये गीत अभी हमने आपको सुनाया। और बहनों भाई अब आगे बढ़ते हैं, याद दिलाते हुए कि कंपटीशन चल रहा है, नाम काफी आ चुके हैं हमारे पास, और विनर का नाम हम प्रोग्राम के खत्म होने से पहले आपको बताएंगे। अपने रेडियो के आसपास रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और राखी का गीत, ऐसा गीत जरा सोचिए, राखी का त्योहार हो, भाई बहन में बहुत प्यार हो, लेकिन एक दूसरे को देखने के लिए लंबा इंतजार हो, दूरियां बरकरार हो, कैसा एहसास होता है उस समय।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: बहन के दिल में कितने अरमान होते हैं, सोचती है कि बांध के राखी भैया को माथे पे तिलक लगाऊंगी, मन चाही पाऊंगी मुरादें जब भी हाथ बढ़ाऊंगी, अपने वीर की सोनी कलाई को चूमेंगी दोबारा, ढेर सा प्यार जमा कर रखना, अगले बरस फिर आऊंगी, हर साल आऊंगी, लेकिन भाई बहुत दूर हो। तो बहन का दिल उदास होता है और सिर्फ इंतजार ही उसके पास होता है। दर्द बनती है आरजू उनकी, अश्क उनके दुहाई होते हैं, भाग्यशाली हैं जिनके बहने हैं और खुश नसीब हैं जिनके भाई होते हैं, नहीं होते तो वो आंखें छलछला के राह देखती हैं, कब आएगा भाई।

0: अगला कहीं का ये था फिल्म का नाम, 1970 की फिल्म, राहुल देव बर्मन का संगीत और रफी साहब की आवाज। व्हाट ए सॉन्ग।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: और साउथ ऑल ट्रैवल वालों का एक संदेश आपके नाम, भाई दुबई की यात्रा करनी है तो भाई साउथ ऑल ट्रैवल से संपर्क कीजिए। दे आर सेइंग दैट दे आर नोन फॉर देयर कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट साउथ ऑल ट्रैवल टुडे ऑन 0208574 8410। साउथ ऑल ट्रैवल, दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Yehey
0: Leica Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर 20 kg sir 10.99.
2: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: आई हैपन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
3: इट्स बैक एंड इट्स बिगर.
0: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026, at the Ram Garia Centre.
0: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: Soplos, Abhis, Stoplos.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: इट्स अ डॉग वॉक. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to check my...
4: Hey, boy!
5: Coast Guard, we're stuck.
6: Okay, help's on its way.
5: Hold on, mate.
7: Shoes, tide, phone.
8: Back before dark, love. Okay.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
10: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
11: और बहनों भाइयों, फरमाइशें आ रही हैं गीतों की. ये गीत जा रहा है बिमला, कमला, सपना और संध्या के नाम. और ये कहती हैं हमारे भाई तक ये संदेश पहुंचा दो. भाई, भाई का संदेश आप तक पहुंचा दें, जो कह रहे हैं कि पिया संग जाकर बसी तू शहर में, है यादें तेरी अब भी गांव में बहना. भले दूर हैं मेरी आंखों से, लेकिन तू शामिल है मेरी दुआओं में बहना. कभी धूप गम की जलाए न तुझको, हमेशा रहे सुख की छाओं में बहना. स्वामी रहे हार बन के गले का, चुभे ना कोई भी खार पांव में बहना. दुनिया का हर गम देख सकता हूँ, सह सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता.

आंख भर आई बहना किस बात पर, रख भरोसा बहन भाई की जात पर, बांध दे हंस के राखी मेरे हाथ पर, यकीन कर तेरा भाई तेरे साथ है, सुख में दुख में हंसी में खुशी में और बेबसी में।

0: ना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: और बहनों भाइयों, मनोरंजन के समापन का समय हो गया है, लेकिन ऐसे कैसे? पहले विनर का नाम तो बताइए भाई। जैमिन कंपटीशन में कौन जीता है, किसके घर पहुंचेगा जैमिन की ओर से ये उपहार का पैकेज? वेल, नोट कीजिए बहनों भाइयों, बहुत सारी एंट्रीज हुई, सबका धन्यवाद। लेकिन ये जो गिफ्ट पैक है ये जा रहा है आपको, आपको लखबरों की नैना लिम्बाचिया को। नैना जी, बहुत बहुत बधाई, मुबारक, शुभकामनाएं। वी गॉट योर एड्रेस एंड योर ईमेल एड्रेस एंड योर नेम एंड फोन नंबर एवरीथिंग, सो वेट फॉर द गिफ्ट पैक।

एंजॉय कीजिएगा और रवि शर्मा को अब अगली मुलाकात तक लिए इजाजत दीजिएगा. हैव अ सुपर्ब वीकेंड. बाय बाय.

0: वाह बंदूक, मैं घबरा गया, मैंने कहा कहां से आया। हो आज तो सिजलिंग फ्राइडे है, बंदूकें चलेगी, लेकिन साथ साथ में राखी का त्योहार है, ऑफ कोर्स प्यार भी बटेगा। एंड इट वाज अ वंडरफुल अवेकनिंग टुडे टू सी माय सिस्टर सेंडिंग मी राखी फ्रॉम नैरोबी, एंड I tied it with happiness and sent her a message. She had sent me a lovely, lovely, lovely note, showering me with lots of sisterly love. So, in the second hour, I was thinking of dedicating the hour to Raksha Bandhan. Yes, Raksha Bandhan, Rakhi ka Tyohar, celebrating the timeless bond of love and protection. यस, एक भाई कैसे प्रोटेक्ट करता है अपनी बहन को। शायद मैं आपको रुला दूं, जिनकी बहनें या जिनके भाई सब दूर दूर कंट्रीज में हैं और दूर से प्यार जताते हैं बहन के लिए या भाई के लिए, उन लोगों के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा। सो आई एम काइंड ऑफ चेतावनी दे रहा हूं मैं कि यू विल गेट वेरी इमोशनल इन द सेकेंड आवर, बिकॉज ये आवर तैयार करते करते मैं इमोशनल हो गया था। सो याद रहे, इन द सेकेंड आवर यू आर गोना बी लिसनिंग टू सम ऑफ द पॉपुलर राखी सॉन्ग्स, रक्षाबंधन के गाने मैं चुन चुन के लाया हूँ बड़ी मेहनत से और रात पाली करके आया हूँ। सो एन्जॉय योर सेल्व्स इन दिस शो। मैं हूँ बाली ब्रह्म भट्ट with Gold Afternoons sponsored by Jaymin, और Jaymin का नाम लेते ही आपकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि थर्ड आवर में हम कॉम्पिटिशन करेंगे जहां पे Jaymin Foods आर विशिंग हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट रक्षाबंधन इन द सेकेंड आवर। इन द थर्ड आवर विल डू कॉम्पिटिशन, और इस आवर में चटपटे गाने। लेट्स गेट ऑन विद इट, शैल वी? बाली ब्रह्म भट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड लाइका gold.com। रक्षाबंधन नेक्स्ट आवर, एंड वी गोना से हैप्पी बर्थडे टू दीपक तिजोरी इन द थर्ड आवर, अ ब्रीफ वन बट इट बी अ गुड वन। Enjoy this Friday afternoon with me and Leica Radio Midlands. Midlands walo, namaskar. Happy Raksha Bandhan, 416th day of Leica Radio Midlands.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 129.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaymin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: One performer. के सामने तो प्रोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
5: Countless personalities.
6: जिंदगी बर्बाद हो गया।
7: A whole universe of entertainment.
8: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है।
9: Sunil Grover live UK tour 2026.
10: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
11: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
12: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
13: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
14: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. Make every day grand.
14: Are we there yet?
15: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
15: How? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simzy before we left London.
15: Simzy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
16: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
17: T's and C's apply.
18: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
19: The wait is finally over.
20: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
19: Mirzapur is coming to the big screen.
21: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
19: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
22: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
19: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 7 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
23: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
24: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
25: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
26: लाइका रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे. बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स.
27: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
28: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
29: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
30: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म है ज्वाला 1970 की, एंड संगीत है शंकर जयकिशन का, राजेंद्र कृष्ण ने लिरिक्स लिखी, एंड गाया किसने, लता मंगेशकर, गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा।
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Wolverhampton on DAB.
0: रफी साहब इन अ गुड फॉर्म। फिल्म है मन की आंखें, एंड जस्ट लिसन टू द सिंगिंग। जयदेव कंपोज द सॉन्ग, साहिर लुधियानवी रोट द लिरिक्स। 1970 की फिल्म मन की आंखें। दिल कहे रुक जा रे रुक जा,

0: यस राखी बंधवाले मेरे वीर, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट एंड वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर पीपल. भाई बहन अगर नज़दीक में हो, साथ में हो, विजिट करते हैं. सच्चे विजय गडोरी अपनी वाइफ को ले गए उनके भाई के पास और आज राखी बंधवाई, खुशी का मौका. कभी कभी परदेश में होते हैं भाई या बहन तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, बिकम्स इमोशनल ऑन अ डे लाइक दिस, स्पेशली टाइंग द राखी. रक्षाबंधन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया. लोग कहते हैं कि इट इज सेलिब्रेटेड अमंगस्ट हिंदूज, बट दैट्स नॉट ट्रू. हिंदूज, जैन्स, सिक्स एंड बुद्धिस्ट्स, दे सेलिब्रेट रक्षाबंधन. और कुछ मेरे मुस्लिम दोस्त जो हैं, वो भी, मैं जब इंडिया में था और केनिया में था और यहाँ भी यूके में, सम ऑफ देम सेलिब्रेट रक्षाबंधन एक्चुअली बिकॉज दे डीपली बिलीव दैट दिस इज अ वंडरफुल फेस्टिवल. इन द फेस्टिवल ऑफ बॉन्ड, लव एंड टुगेदरनेस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, All the females, they bind Rakhi on the hands of their brothers and their friends, whom they treat as brothers. And bhai jo hote hain, in return they give gifts and pledge to protect them from dangers and problems. Girls also do puja and pray for a long life of their brothers. Not only Hindus, like I said, but believers of other faiths also take part in this festival. Ab history mein dekha jaye to it goes jaise ancient Vedic scriptural roots jo hain in the Bhavishya Puran. Shachi ties a protective sacred thread called Rakshabandhan, Rakshabandha, around the wrist of her husband, Lord Indra. जब वो बैटल पे जाते थे, जब वो ही वेंट टू वॉर अगेंस्ट डीमंस, यम एंड यमुना. द लेजेंड सेज, यू नो, द गॉड्स ऑफ गॉड ऑफ डेथ यम विजिटेड हिज सिस्टर यमुना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड शी टाइड राखी ऑन हिम एंड ही ग्रांटेड हर इमोर्टैलिटी इन रिटर्न. द सेक्रेड thread ritual, historically on the full moon of the month of Shravan, जहां पे पंडित लोग जो होते हैं वो भी जनोई बांधते हैं अपने पेट्रंस पे. एंड कुछ लेजेंड्स महाभारत जैसी कहानी में कृष्णा और द्रौपदी की कहानी है, जब लॉर्ड कृष्णा की उंगली कट गई थी वाइल इन बैटल एंड द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक कपड़ा बांधा एज अ बैंडेज टू द वूंड एंड ही वॉज सो डीपली मूव्ड कृष्णा एंड ही प्रोमिस टू प्रोटेक्ट हर. ये प्रोमिस उन्होंने फुलफिल की थी जब कौरव ने द्रौपदी को इंसल्ट किया था रिगार्डिंग हर ऑनर. अब आगे देखा जाए तो एम्परर हुमायूं इन द 16th सेंचुरी, यू नो, द क्वीन ऑफ मेवाड़, शी सेंट अ राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्वेजन ब्रिजिंग डिवाइड्स अक्रॉस फेथ्स. वहां भी राखी को यूज किया गया. रविंद्रनाथ टागोर, यहां पे कहानी थोड़ी क्रूड हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई बनी नहीं. 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को यूज करके एज अ पॉलिटिकल टूल एनकरेजिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टाई कॉटन थ्रेड्स ऑन ईच अदर्स रिस्ट्स इन सॉलिडारिटी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल डिवीजन. लेकिन आज की तारीख में इट हैज नॉट प्रूव्ड टू वर्क आउट. दे आर फार अपार्ट एंड as years go by there is open hatred being seen. I hope the world improves and comes into peace. mode. As years go by, human beings should realize their mistakes and do not let religions rule the world, but let music be the religion and let love be there throughout the world. Modern practices mein it's always been used. Abhi dekha jaye to rituals across India and Nepal, how the date of festival is calculated using the lunar calendar. August, obviously Georgian calendar mein Raksha Bandhan hota hai. So that was my study of Raksha Bandhan, the history of it, and geography ko to geography bhi kaho. Let's listen to some of those wonderful songs based on Raksha Bandhan. Main hoon Bali Brahmbhatt on Laika Gold with Gold Afternoons. Happy Raksha Bandhan to all.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one sterling pound, you can fetch 129.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube 11, 11. Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties.
10: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक Everyday Grand.
12: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
13: Birmingham. Get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hit maker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
14: I am fancy happy valley feeling like a Diwali.
15: It's back and it's bigger.
16: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
15: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
16: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
15: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
17: लाइका रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे. बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स.
18: शी इज बैक.
19: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने. इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर.
18: कैच अनीसा नासिर एज शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या गाया किशोर दा ने, बड़ा इमोशनल गाना है। यस गीता, आई अंडरस्टैंड, इट्स लाइक नमो इज सिंगिंग टू यू, गॉड ब्लेस हिज डिपार्टेड सोल।
1: नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब इस कंट्री में आया, that was 1976, तो पहले तो काफ़ी मुश्किल ही हुई, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थोड़ा सा होता है। वी ग्रू अप स्पीकिंग इंग्लिश, जहाँ पे ब्रिटेन का राज था, केनिया में, सो वी हैड टू स्पीक इंग्लिश इन स्कूल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन द एक्सेंट वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे आके देखा तो पीपल वर टॉकिंग वेरी फास्ट एंड हम लोग पार्डन करते रह गए, लेकिन जैसे साल गुजरते गए हम भी समझने लगे, और हमारे बच्चे यहाँ पे जो जन्मे हैं वो तो आंख बंद करो तो ऐसा ही लगे कि कोई गोरा बात कर रहा है। एनीवे, मैं जब पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था ऑन द काउंटर्स, एंड तभी फ्राइडेज को वी यूज टू हैव अ ड्रिंक ऑल द फ्रेंड्स, एंड इट यूज टू बी अ मिक्सचर ऑफ फ्रेंड्स, अलग अलग मज़हब के लोग, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, हिंदूज थे, सब लोग हम बैठ के जब ड्रिंक्स पीते थे तो कभी कभी डिस्कशन होता था। इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन, इट वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन एक गोरे ने मुझसे कहा कि यू सेलिब्रेट क्रिसमस, सो आई सेड या आई एम इन ब्रिटेन, सो आई सेलिब्रेट विद यू गाइज, रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, एंड आई सेलिब्रेट माई दिवाली एज वेल। एंड ही सेड, बट यू आर काइंड ऑफ अ लॉस्ट रेस, आंट यू? मैंने कहा कैसे? बोलते कि आपके कल्चर में देर इज हार्डली एनीथिंग लाइक फादर्स डे और मदर्स डे। तो मैं थोड़ा सा चुप हो गया, बिकॉज ही वॉज राइट, हमारे कल्चर के अंदर फादर्स डे नहीं है, मदर्स डे नहीं है। मैं ये बात सुनता रहा कुछ महीनों तक, जब भी ये बात छिड़ती थी, पर मेरे दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था कि मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। एंड देन आई सेट डाउन एंड आई थॉट एंड आई टॉक टू सम ऑफ माई एल्डर्स, एंड देन आई गैदर्ड वन थिंग। एंड एक दिन उसी गोरे के साथ मैं पब में बैठा था इन हैरो ऑन द हिल, आई रिमेम्बर वेरी वेल, माइक वॉज इज नेम। एंड मैंने उसको कहा, सब ग्रुप के सामने मैंने कहा, यू नो माइक, यू टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो अबाउट अस बीइंग अ लॉस्ट रेस, बिकॉज वी डोंट इन आवर कल्चर वी आर मिसिंग अ फ्यू थिंग्स लाइक फादर्स डे, मदर्स डे। आप लोगों ने फादर्स डे इजहार किया, मदर्स डे तो हमने कॉपी किया आपको, एंड आप लोग, आपके कल्चर से हमने काफ़ी चीज़ें कॉपी की है। तो आप लोगों ने शायद योगा कॉपी किया हो, शायद आपने काफ़ी चीज़ें हमारे कल्चर से कॉपी की हो, लेकिन ये बाहर नहीं आता। ये बात जो है फादर्स डे एंड मदर्स डे वाली बाहर आती है। अभी ये बात आगे बढ़ी तो मैंने उसको कहा, लेकिन आपके कल्चर में एक बहुत किस्सा मिस हो गया। तो उसने कहा कि मिस हो गया मतलब? आई सेड, यू नो, यू हैव फादर्स डे एंड योर मदर्स डे, वी डोंट हैव फादर्स डे एंड मदर्स डे बिकॉज अवर फादर्स एंड मदर्स स्टे विद अस ऑल अवर लाइव्स, वी स्टे एज अ क्लोज निट फैमिली। तो हम तो हर रोज फादर्स डे और मदर्स डे मनाते हैं, आप लोग आपके फादर्स को और मदर को छोड़ देते हैं 16 साल की उम्र में, वो लोग कहीं ओल्ड पीपल्स होम्स में चले जाते हैं। इस साल में एक दिन आउट ऑफ गिल्ट आप चेक करने जाएंगे फादर्स डे को, एक गिफ्ट लेकर, चॉकलेट का बॉक्स लेकर, उनको गिफ्ट देने के लिए, फादर्स डे मदर्स डे। हम तो हर रोज मनाते हैं, तो हम, हमारे कल्चर में इसलिए नहीं है फादर्स डे एंड मदर्स डे, लेकिन आपके कल्चर में एक बात मिस हो गई है, दैट इज ब्रदर सिस्टर डे। एक भाई अपनी बहन को जब राखी बांधता है तो एक अलग फीलिंग होती है। देर इज अ फीमेल इन फ्रंट ऑफ यू, बट शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड, शी इज नॉट योर वाइफ, शी इज नॉट योर मदर, शी इज नॉट, बट एक सिस्टर है, तो उसकी फीलिंग्स अलग होती है। यू विल नेवर थिंक हर डिफरेंटली एज अ फीमेल, बट एज अ सिस्टर एक अलग ही रिश्ता होता है. एक बहन का रिश्ता जो होता है और भाई का रिश्ता होता है वो आपके कल्चर में मिसिंग है. हमारे कल्चर में है वो. कभी ना कभी आप लोग कॉपी करके हमारे कल्चर को आप भी ब्रदर सिस्टर डे मनाएंगे किसी दिन. और वो गोरा चुप हो गया और सब ने तालियां बजाई उस दिन. आई वॉज सो हैप्पी. मुझे इतने महीने लगे लेकिन मैंने उसको जवाब दे दिया था. आपका क्या ख्याल है इस बात पे?
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3579, Indian rupees 129.62, Pakistani rupees 376.83, Afghanistanis 89.52, Kenyan shillings 175.71, and Mauritian rupees 63.62.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £109.09 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
2: This is Leica Radio across the Midlands. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
4: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

0: रेशम की डोरी में नाजिमा को शी गॉट नॉमिनेटेड फॉर हर रोल एज अ सिस्टर। अगला जो गाना था अनजाना फिल्म का वो भी, लेकिन रवि भैया ने ये सुना चुके हैं, तो मैं एक दूसरा गीत आपको सुनाता हूँ, फिल्म चंबल की कसम, नॉट ऑन नाजिमा।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: चंदा रे मेरे भैया से कहना, लता मंगेशकर जी ने गाया, चंबल की कसम 1980 की फिल्म, खयाम का संगीत और साहिर लुधियानवी जी की लिरिक्स। आई होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट ऑफ रक्षा बंधन।

0: Yes, beautiful songs from film Sadak and Anjaam. ये दो गाने मैंने आपको क्यों सुनाए, अब इसमें से एक छोटी सी कहानी कहता हूं मैं. एक एमेचर थिएटर ग्रुप था, उसमें कुछ मेंबर्स थे जैसे कि आमिर खान, बड़ा नाम, आशुतोष गवारीकर, बड़ा नाम, परेश रावल, विपुल शाह जैसे लोग. एंड इस ग्रुप के अंदर एक और लड़का शामिल था. ये लड़के ने एजुकेशन किया था, कॉलेज एजुकेशन फ्रॉम नरसी मोंजी कॉलेज एंड इन हिज होम टाउन मुंबई. ऑफ कोर्स हिज पारसी मदर हैड बीन अ डांसर एंड रेडियो आर्टिस्ट एंड दिस यंग बॉय ऑलवेज सेज शी वाज हिज इंस्पिरेशन. अब ये कॉलेज में ही, नरसी मोंजी कॉलेज में, उसने ये एमेचर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद उन दोस्तों ने मिलकर कुछ अरसे के बाद उन्होंने उसको एनकरेज किया कि तू व्हाई डोंट यू टेक अ करियर इन फिल्म एक्टिंग. तो उसने बात सुन ली और 3 साल तक वो प्रोड्यूसर्स की ऑफिस के बाहर बैठता रहा एंड छोटे मोटे रोल्स करता रहा. देवर पैथेटिक रोल्स. लेकिन महेश भट्ट उसकी लाइफ में आए और उसको आशिकी फिल्म में एक अच्छा सा रोल दिलाया. ये है दीपक तिजोरी. जी हां, उसकी लाइफ शुरू हो गई फिल्म आशिकी से और उसके बाद इतना अच्छा काम किया इंडस्ट्री में कि आज एक बड़ा नाम है दीपक तिजोरी. दीपक तिजोरी के बारे में मैं जितना कहूं कम है, क्योंकि एक दोस्त है जिसके साथ मैंने काम भी किया है. मैंने एक गाना गाया था, देवानंद साहब की फिल्म थी गैंगस्टर, उसमें मैंने गाना गाया था आजा छोरी आजा गोरी बांगड़ की तेरी कमर पे चोटी लटके हैं, और वो बिंदु दी एक्ट्रेस उनके साथ और दीपक तिजोरी के साथ शूट हुआ था वो गाना मेरा. दीपक तिजोरी वॉज अ स्टेपल साइट इन 90s साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, सस्पेंस फिल्म्स, एक्शन ड्रामास. ही ऑफ्टन प्लेड द वेल मीनिंग हस्बैंड, द क्लोज कॉन्फिडेंट, और द ट्रेजिक विक्टिम हुज फेट ड्राइव्स द थ्रिलर्स प्लॉट. द मोस्ट नोटेबल सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन दीपक तिजोरी, जो मैंने अभी आपको दो गाने सुनाए, उसमें से बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म अनजान में वो गाना है तू सामने जब आता है, और रहने को घर नहीं वो संजय दत्त के साथ इतनी खूबसूरत पिक्चराइजेशन हुई. सो वी आर विशिंग नन अदर देन दीपक तिजोरी अ वेरी हैप्पी 65th birthday. He was born on 28th August 1961 in Mumbai. And kitni achhi achhi filmon mein kaam kiya hai. Ek film to, my God, it's gone into the 10 best college films. That is Jo Jeeta Wohi Sikandar. Ji haan, wo naam dete hi log taaliyan marte hain. Jo Jeeta Wohi Sikandar. Kabhi haan, kabhi na. गुलाम, बादशाह, ऐसी ऐसी फिल्में. फिर प्रोड्यूस भी की फिल्में, डायरेक्ट भी की फिल्में. ही इज बीन अ बिजी मैन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री. एंड माय ब्रदर बॉब हैज स्पेशली सेंड हिम हैप्पी बर्थडे विशेस एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ लाइका गोल्ड, दैट इज हिज फ्रेंड बाली ब्रह्म भट्ट. आगे बढ़ते हैं. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड LaikaGold.com एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. हैप्पी बर्थडे दीपक तिजोरी. लाइका रेडियो. और अभी लाइका गोल्ड पे क्या होने वाला है?
1: Win with Jamin Foods.
0: Okay, Jamin Foods mein competition ho rahi hai. And let me tell you more about this competition. Leica Radio Network is celebrating Raksha Bandhan today by giving away a box of treats by Jamin Foods. This show, Gold Afternoons, is sponsored by Jamin Foods and gives me great pleasure to do this competition for the box of treats by Jamin Foods. Jamin is renowned for mouth-watering range of namkeen, pickles, mukhwas, papad, not to forget the aam ka ras. That's right. Plus exciting ready meals like khichdi, poha, shira, pav bhaji, vegetable biryani ready in just 5 minutes by adding hot water. Jaminsnacks.com. Us pe aapko sare products nazar aayenge. Simply send the word Jamin for your chance to win. Your chance to win: a name, address, mobile number, email address is required for parcel tracking and verification. Ab maine kya kaha? 5 cheeze chahiye. The word Jamin, then your full name, your address, your telephone number and email address. Agar isme se kuch bhi miss hua to aapka chance chala jayega. Terms and conditions apply. At the end of this hour, we shall mention the winner. Good luck.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Jamin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 02 03.

छुप छुप के वो रोते हैं जिनको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अभी हासिल होने वाला है पन्ना राजानी को। पन्ना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विन द जैमिन रक्षाबंधन हैम्पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू ऑल हु पार्टिसिपेटेड। Somebody had to win. I guess it was Panna's luck.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties.
5: नोक झोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी जहां है खाखरा नमकीन भाखरी चिक्की सोन पापड़ी पिकल्स और बहुत कुछ
6: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन
7: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
8: Cutthroat Ke Khiladi.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: Punjab, the biggest tunes.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Laika Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपन Protected.
4: Passports, tickets, kids' tablets.
5: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
4: And checking in with grandma.
5: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
4: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
4: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Holiday sorted.
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
10: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: The voice that turned love, heartbreak, and memories into timeless songs.
12: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound
12: on Friday, 11th September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
11: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
12: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
13: New hits on Leica Radio.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
5: इस रक्षाबंधन को बनाए खास लाइका रेडियो के साथ। लाइका रेडियो की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, इन द वोकल्स ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक. व्हाट अ लवली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिटवीन अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी. ऑफ कोर्स आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान एज वेल इन दिस मूवी. दिस मूवी इज मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अ लवली 90s मूवी. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, आई डेफिनेटली रिकमेंड, देखो जरूर उसको. Long weekend hits on Leica.

0: गल्ला गुड़िया इन द वोकल्स ऑफ सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, फरहान अख्तर. व्हाट अ लवली ट्रैक. एकदम ग्रूवी है, परफेक्ट फॉर अ फ्राइडे इवनिंग. अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस सॉन्ग, सो दिस सॉन्ग इज एक्चुअली फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो. दिस सॉन्ग इज एक्चुअली अ सिंगल टेक फॉर्मैट. द एंटायर सीक्वेंस इन दिस मूवी वॉज फिल्म्ड इन वन कंटिन्यूस 5 minute टेक. नाउ दिस सॉन्ग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स बिकॉज ऑफ द प्रिसाइज टाइमिंग. You know, कौन कहां खड़ा होगा, एंड देन व्हेन द कैमरा कम्स टू देम दे हैव टू डू देयर बिट. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोरियोग्राफी बाय बॉस्को एंड सीजर. व्हाट अ लवली सॉन्ग, एंड आई लव दिस मूवी. एक और इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस मूवी इज, सो इनिशियली यू नो फॉर द रोल ऑफ रणवीर सिंह एंड प्रियंका चोपड़ा, Kareena Kapoor and Ranbir Kapoor were approached for this movie, but because of some date issues, they declined, and then of course it went to Priyanka Chopra and Ranveer Singh. Well, I love that brother-sister duo, and of course we're talking about brothers and sisters. A very happy Raksha Bandhan to all my lovely listeners. I am Veer in for the lovely Radio Wali on your favorite radio station, like a radio.
1: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: ये है लाइका रेडियो, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट,
1: द दिवाली स्टोरी शोकेस होस्टेड बाय राज बदन एंड खुश. The team of this incredible show takes us behind the Diwali story, exploring why the Ramayana still matters today. Nitin Palan, founder of Sanatan Events, shares why they chose to present the show in English. With over 300 actors auditioning and a production built with heart, this is a story that you'll want to experience. After a sold-out show at the Royal Albert Hall, the Diwali story is coming to Over Arena, Wembley, on Sunday, the 27th of September. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
0: Laika Extra is here. Laika Radio.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.

ऐसी दीवानगी, दिस टाइटल ट्रैक फ्रॉम द सुपरहिट 90s मूवी दीवाना, दिव्या भारती, शाहरुख खान एंड ऋषि कपूर. व्हाट अ लवली मूवी. दिस वाज शाहरुख खान्स डेब्यू मूवी एज वेल. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं इन माय गानों का पिटारा. एंजॉय दिस लवली ट्रैक जस्ट कमिंग अप फ्रॉम द मूवी सैयारा. Radio Network.

0: नई रुकना इन द वोकल्स ऑफ नवीन कुंद्रा अमेजिंग वाला गाना ऑन लाइक अ रेडियो
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128.75 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: लाइका रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स
1: इन 4 डेज Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

0: Vocals of Guru Randhawa and Neha Kakkar from the movie Vicky Donna. I loved Ayushman Khurrana in this movie. What a lovely movie. Acha, I have the winner of the Jaimin competition, and that is Ruby Kanwar. Congratulations and enjoy your Jaimin voucher. The hamper.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold's trading at £105.91 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर travel mantra.

0: This is the Lyca Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danube Properties London office today on 02 03 96.

0: Biker Radio.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल एट Protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.